सूत कलह न कीड़िया क्यों चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया क्यों पार वसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो वे।

अंत काल जम धुंधवे उत नारायण बोले छहया अंत काल जम धुंधवे उत नारायण

राग माली घोड़ा। राग माली घोड़ा भारतीय संगीत दे अति अलप प्रसिद्ध जा प्रचलित रागां दे वर्ग दा एक कठिन राग है। भारतीय संगीत दे प्राचीन जा मध्यकालीन ग्रंथां इत्थों तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंत विच अंकित रागमाला विच इस दा जिक्र नहीं आया। एक मत है कि राग मुसलमाना दी काढ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच इस राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द, गुरु अर्जन देव जी दे 8 अते भगत नामदेव जी दे 3 शब्द उपलब्ध हैं। माली घोड़ा दा सुभा खुशी उपजाउणा अते काम क्रोध आदि दी मार तों बचण लई तैयार करना है। परमेश्वर दी दित्ती हर चीज नूं वर्तन दा वल आ जाएगा जे नाम दी टेक रखांगे अते खिन खिन राम नाम नूं ही नमस्कार करांगे। राग माली घोड़ा दे गौण स्वरूप विच ऋषभ अते धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगदे हन। इस दा वादी स्वर ऋषभ अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा 4 पहर। गुरु अर्जन देव जी दे रचित 2 शब्द, पहला ऐसो सहाई हर को नाम अते राम नाम को नमस्कार गायन कर रहे हैं भाई प्रतिपाल सिंह जी इंदौर वाले अते भाई नरेंद्र सिंह जी। पहला शब्द सर्वन करो, ऐसो सहाई हर को नाम।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाकते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंड सज्जन संत पक्के हैं, जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन इह जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इसनू वरत लीए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभाव जोड़े हुए सन, सुभाव पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचड़ा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जो रहे हो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज होने हाँ, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हाँ, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हुंदा सी। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुम उस ही देखना है। बाणी के साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जिहड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हूं त्याग दिंदी है। जह बिगंध जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उसका कोई ना कोई अवगुण या कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी, कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभाव पक चुके सन, आलस का सुभाव गलत है, निंदा का सुभाव गलत है, चुगली का सुभाव गलत है, होमे का सुभाव गलत है, उच्चा बोलन का सुभाव गलत है, कौड़ा बोलन का सुभाव गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिते, डिले नहीं की। जोई जोई जो रहे हो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वो कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं। पहला उसको सुनो, फिर उसका असं अर्थ करांगे।

Soğuk da yürüdü. संत पुनीता, संत जी का प्यार है ना, कहीं प्यार है ना,

तेरी क्या है, तेरी रहमत तेरी है, तेरी बख्शिश है, सुख जाएगी दर्शन कोई भी अमृत रहेगा दान पहुंचा फिर दास कर देता है तेरी जिससे मैं नहीं सिखाता है जिससे तेरा मन है तेरा गुरु भी तेरा लिखी गुरु भी है तेरा गुरु है जो कुछ है सो तेरा कदे लिखा जुटे गुरु ना।

उन ग्रंथा निराकर गौड़ी गुआरे सतगुरु जी ने इस राग को गुरु ग्रंथ साहब के तीजा स्थान दिता है। ये भी बहुत वड्डा राग है गुरु ग्रंथ साहब के गौड़ी गुआरे मारू दो राग सतगुरु जी बहुत वड्डे बहुत बाणी उच्चारण किए जिला राग है। आओ ये शाम का राग है गौड़ी गुआरे जब हो इस शब्द न मेरे जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल देश संदेरिया सतगुरु जी ने गौड़ी गुआरे

सिख लोक सुनावे। कंत न पुछे वातड़ी सुहाग गणावे। चूहा खड ना मावई लग छज वलावे। मंत न होए अठुहिया हथ सप्पी पावे। सरसन ने आगास नो फिर मथे आवे। दुही सराई जरदरू बेमुख पछतावे। दुही

रतन मणि गल बंद रह क्यों कीम न जाने। रतन मणि गल बंद रह क्यों कीम न जाने। करछी साओ न समले भोजन रस खाने। डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने। नाप कठूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने। गुजर गोड़स वेच के खल सूड़ी आने।

छाय छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाय छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्ने छिलछु है न कोई। रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई।

ते हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़िया बने न विच समावे।

मुंह कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर समय तिस नाल न

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडी, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरु शरण विमुख

वंश घात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास त्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहाली है, फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहाली है, फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध प्याली है, व्यो मुखो सुटे। सप्पे दूध प्याली है, व्यो मुखो सटे। पत्थर पानी रखी है, मन हठ न घटे। चौआ चंदन पर हरे, खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो, हठ मूल न हटे। अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे।

सिर छार उड़ावे। तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होनिया सतसंग ना पाए, मूर्ख सच न जाननी। निंदक

बैखा जै कूणे लसन लुकाया ना लुके बैखा जै कूणे काला कंबल उजला क्यों होए साबूने डेमू खखर जोछ है दिसे मुह सोने

कै पाखंड कमत्ता दरसे वै मिर्गावले होए बै अवत्ता करे हकूमत अगली कूड़े मदमत्ता बोलन पाज उघाड़िया ज्यों मूली पत्ता त्यों दर गए मीणा मारिए

कर दे परवासा, थल विच तपन पठिया क्यों लह प्यासा, सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

अचल अविनाशी सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मलनासी सतगुर चरण कमल रित धारण गुर अर्जुन गुण सहज विचारण गुरु राम

महाराज जी वाणी चाकते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागी, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन नाव रूप भयो साध संग, नाव रूप भयो साध संग, केंदे जड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो, नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया समझ लो वह किश्ती दे विच बैठ गया है, जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पव सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दसिया है कि साधु सानू की रस्ता दसते हैं, की मार्ग दसते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब देता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नु जोड़ के, हर मार्ग साधु दसिया, साधु ने ए मार्ग दसिया कि जपिए गुरमंत्र। साधु कहता है गुरु मंत्र जपो।

0: अपने पर रस की द्वेष और पिया हाजिर हाल बड़ा अच्छा कीर्तन हो गया सरकार की कोशिश करेगा कि आज का वही आनंद बनाई रखे। मैं हाजिर आना हाँ आज्ञा दो कि दास अपनी कुछ नीतियों का आप जी सामने कीर्तन गायन कर सकते।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

अरभलोक सियाने, तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी, मुन इंद्र महा शिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

आओ गुरु के सिखो। ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हन, आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनूं याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी, आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, आ नवे सिख सज रहे, भावे ओनू समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी बीबी सी, उसने उठ के कहा भावे मैनू अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे चरणा नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या मैं नितनेम नाल इसनू टेप ते सुन दी हां और बड़ा ही मैं जिवें एक शब्द सुन के हेमकुंड साहिब ते पहुंच जानी हां। तो गुरु की साध संगत आओ आपां वी उसे ध्यान नाल

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। Whatever you desire, you shall receive that reward, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jyot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karta hai, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aavai, mohe anth luptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।